तो सच्ची नाई ये पंक्ति ना पढ़ी जावे ओ तुकांत ते छे तुक पौड़ी दा जो गुरु महाराज ने तुम चढ़ाई है वो पूरा नहीं होंदा। सवाल ये आया है कि उस पंक्ति नाल गुरु महाराज ने रहाव लिखिया है, बिल्कुल दुरुस्त है थोड़ा सवाल। रहाव का मतलब की होंदा है? कोई भी बाणी कोई भी शब्द जिथे रहाव लिखिया होंदा है उदे विच शब्द का केंद्री भाव होंदा है। रागी सिंह जदों उस शब्द का या पौड़ी का कीर्तन करते हैं तो उस पंक्ति नूं बार बार दोहराते हैं। राव का मतलब ये होंदा है कि इस पंक्ति नूं बार बार पढ़िया जाए। रागी सिंह भी अक्सर जदों कीर्तन करते हैं और रहाव नहीं उच्चारण करते। जो रहाव का भाव है उदे उत्ते अमल होंदा है। अस्थाई की पंक्ति नूं बार बार पढ़ते हैं इसलिए आपां भी हर पौड़ी के अंत विच उस पंक्ति नूं बार बार पढ़िया। जदों रहाओ दी रहाओ शब्द दे जो सिद्धांत ने भाव ने उन्हां ते अमल हो गया। ये जरूरी नहीं कि हर वारी रहाओ नाल पढ़िया जावे। हाँ, जदों आपां सहज पाठ या अखंड पाठ करते हाँ जिथे भी रहाओ लिखिया होंदा है उत्थे उसका उच्चारण किया जाता है। हर पौड़ी की अखीर ते रहाओ लिखिया होया नहीं, इस वास्ते उसका उच्चारण करना भी जरूरी नहीं है। हाँ, जो उस रहाओ का भाव है भी बार बार पढ़ना, वो सिर्फ उस पंक्ति नूं बार बार पढ़िया गया है जिस दे लई गुरु महाराज ने सानू संकेत दिता से। इहदे बारे इन्नी की विचार संगतां दे अगे समर्पण कीती गई है। आओ हुण आपां अगे पाठ दे नाल जुड़िए। एक वार प्यार दे नाल आखो

सुख सुबंध सोहागणी पेर पाया गुणतास लेफ निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए पेर मुती डोहागणी तिन दुखी रैन विहाय किती चखाओ साडड़े किती वेस करे पेर बिन जोबन बाद गयम वाडी झूरे दी झूरे सच्चे संदा सदड़ा।

0: निरालम धुंदूकार निरालम बैठा धुंदूकार निरालम बैठा ना तद धंद पसारा हे जुग छतीह तिनै वरताए ज्यो तिस भाणा तिवै चलाए तिस है सरीक न दिसै कोई आपे अपर अपारा हे गुपते बुझहो जुग चतुआर गुपते बुझहो जुग चतुआरे घट घट वरतै उदर मझारे जुग जुग एका एकी वरतै कोई बुझै गुर विचारा हे बिंद रगत मिल पिंड सरिया बिंद रगत मिल पिंड सरिया पौन पानी अगन मिल जिया
1: अग्नि
0: पौन पानी अग्नि मिल जिया आपे चोज करे रंग महली होर माया मोह पसारा हे गर्भ कुंडल मह उर्द ध्यानी आपे जाने अंतर जामी सास सास सच नाम समाले अंतर उदर मझारा हे चार पदार्थ लै जग आया शिव शक्ति घर वासा पाया एक विसारे ता पिड़ हारे अंदलै नाम विसारा हे बालक मरै बालक की लीला।

त्रिगुच्छ है, त्रिग जीवन संसारा हे। काली हु फुन तौले आए, मिण नावै गाथ गया गवाए। दुर्मत अंधला बिनस बिनासै, मुठे रोए पुकारा हे। आप विचार ना रोवै कोई, सतगुर मिलै ता सोजी होई। बिन गुर बजर कपाट ना खुल है, शबद मिलै निस्तारा हे। बिरद भया तन छीजै देही, राम ना जपई अंत स्नेही। नाम विसार चलै मोहे कालै, दरगह

0: जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पासारा जम के फाहे सतगुर तोड़े गुरमुख तत बिचारा हे कूड़ मुठी चालै बहुराही मन मुख दाजै पाड़ पड़ पाही अमृत नाम गुरु वड दाना
1: पड़ पड़ पाही
0: मन मुख दाज है पाड़ पड़ पाही अमृत नाम गुरु वड दाना नाम जपहो सुख सारा हे सतगुर तुठा सच दृढ़ाए सब सतगुर तुठा सच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए न गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा हे खेहू खेह रलै तन छीजै मन मुख पाथर सैल ना पीजै करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतारा हे माया बिख भयंगम नाले माया बिख भयंगम नाले इन दुबिदा घर बहुते गाले सतगुर बाज हो प्रीत ना उपजै भगत रते पतियारा हे साकत माया कौ बहुताव है नाम विसार कहां सुख पाव है त्रिहो गुण अंतर खप है खपाव है नाही पार उतारा हे कूकर सूकर कही है कूड़ियारा पाओ कमर है पाओ पाओ पाओ हारा मन तन झूठे कूड़ कमाव है दुर्मत दर्ग है हारा हे सतगुर मिलै ता मनुआ टेकै राम नाम दे सरण परेकै हार धन नाम अमोलक देवै हार जस दर्ग है प्यारा हे राम नाम साधु सरणाई सतगुर बचनी गात मित पाई नानक हर जप हर मन मेरे हर मेले मेलन हारा हे मारू
1: हुण इत्थे इस शब्द दीआं 17 पौड़ियां आ गईआं इसी लई पहलां बेनती कीती गई सी कि ते 15 भी आउणगीआं ते पर उत्थे सोलहे शंदावाचक समझणा हन
0: मारू महला पहला घर रहो रे मन मुगद याने राम जपहो अंतरगत ध्याने लालच छोड़ रचहो अपरंपर यो पाप हो मुक्त द्वारा हे जिस बिसरिया जम जोहन लागै सब सुख जाहे दुखा फुन आगै राम नाम जप गुरमुख जियड़े एहो परम तत विचारा हे हर हर नाम जप हो रस मीठा गुरमुख हर रस अंतर डीठा एहनस राम रहो रंग राते एहो जाप तप संजम सारा हे राम नाम गुर बचनी बोल हो संत सभा मह एहो रस टोल हो गुरमत खोज लहो घर अपना बाहुड़ न गर्भ मझारा हे सच तीर्थ नाव हो हर गुण गाव हो तत विचार हो हर लिव लाव हो अंत काल जम जो हे न साकै हर बोल हो राम प्यारा हे सतगुर पुरख दाता वट दाना जिस अंतर साच सो सबद समाना जिस कौ सतगुर मेल मिलाए तिस चूका जम भै पारा हे तिस चूका जम भै पारा हे पंच तत मिल काया कीनी तिस मह राम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म राम राम है आत्म हर पाईऐ सबद विचारा हे सत संतोख रहो जन पाई खिमा गहो सतगुर सरणाई आत्म चीन परात्म चीन हो गुर संगत इहो निसतारा हे साकत कूड़ कपट मह टेका अहनिस निंद करह अनेका अहनिस निंदा करह अनेका बिन सिमरन आवह फुन जावह ग्रब जोनी नरक मझारा हे साकत जम की कान ना चूकै जम का डांड ना कबहू मुकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरयो भार अफारा हे बिन गुर साकत कहो को तरिया होमै करता भव जल परिया बिन गुर पार ना पावै कोई हर जपिए पार उतारा हे गुर की दात ना मिटै कोई जिस बखसे तिस तारे सोई जन्म मरण दुख नेड़ ना आवे।

0: मन सो प्रभ अपर अपारा हे, गुर ते भूले आवहो जावहो, जन्म मरहो फुन पाप कमावहो, साकत मूड अचेत ना चेत है, दुख लागै ता राम पुकारा हे, सुख दुख पुरब जन्म के किए, सो जानै जिन दातै दिए, किस कौ दोष देहे तू प्राणी, सहो अपना किया करारा हे, हौ मैं ममता करदा आया, आसा मनसा बंद चलाया, मेरी मेरी करत क्या ले चाले, बिखलादे छार बिकारा हे, हर की भगत करहो जन पाई, अकथ कथो मन मन है समाई, उठ चलता ठाक रखो घर अपने, दुख काटे काटन हारा हे, हार गुर पूरे की ओट पराती, गुरमुख हार लिव गुरमुख जाती, नानक राम नाम मत ऊतम, हर बखसे पार उतारा हे, मारू महला पहला, सरण परे गुरदेव तुम्हारी, तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज ना जाने कोई, तू पूरा पुरख विधाता हे, तू आद जुगाद करह प्रतिपाला, घट घट रूप अनूप दयाला, ज्यो तुद भावै तिवै चलाव है, सब तेरो किया कमाता हे, अंतर ज्योत भली जग जीवन, सब कट भोगै हार रस पीवन, आपे लेवै आपे देवै, तेहो लोई जगत पित दाता हे, जगत उपाय खेल रचाया, पवनै पानी अग्नि जियो पाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सो दसवां गुपत रहाता हे, चार नदी अग्नि असराला, कोई गुरमुख बुझै सबद निराला, साकत दुरमत डूबह दाज है, गुर राखे हर लिव राता हे, आप तेज वाय पृथ्वी आकाशा, तिन मह पंच तत् घर वासा, सतगुर सबद रह रंग राता, ताज माया होमै भ्राता हे, एहो मन भीजै सबद पतीजै, बिन नावै क्या टेक टिकीजै, अंतर चोर मोह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता हे, दुंदर दूत भूत पी हाले, खिंचो तान करह बेताले, सबद सुरत बिन आवै जावै, पत खोई आवत जाता हे, कूड़ कलर तन पसमै ढेरी, बिन नावै कैसी पत तेरी, बाते मुकत नाही जुग चारे, जम कंकर काल पराता हे, जमदर बाते मिल है सजाई, तिस अपराधी गात नहीं काई, करण पलाव करे बिल लावै, ज्यो कुंडी मीन पराता हे, साकत फांसी पड़ै इकेला, जम वस किया आंद दुहेला, राम नाम बिन मुकत ना सूजै, आज काल पच जाता हे, सतगुर बाज ना बेली कोई, एथै उथै राखा प्रभ सोई, राम नाम देवै कर किरपा, इयो सललै सलल मिलाता हे, भूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जादे मार्ग पाए, तिस गुर सेव सदा दिन राती, दुख भंजन संग सखाता हे, गुर की भगत करह क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखिया, जिस पख से तिसह पछाता हे, अंतर प्रेम प्राप्त दर्शन, गुरबाणी स्यो प्रीत सो परसन, अहनिस निर्मल ज्योत सबाई, घट दीपक गुरमुख जाता हे, भोजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाखिया तिन दर्शन डीठा, दर्शन देख मिले बैरागी, मन मनसा मार समाता हे, सतगुर सेवह से प्रधाना, तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना, नानक हर जन की संगत दीजै, जिन सतगुर हर प्रभ जाता हे,
1: मारू महला पहला, साचे साहिब सृजनहारे, जिन तर चकर तरे विचारे, आपे करता कर वेखै, साचा वे प्रवाहा हे, ਵੇਖੀ ਵੇਖੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਦੁਏ ਪੰਦੀ ਦੁਏ ਰਾਹ।

नौ कर थापे थापण हार है, दसवै वासा अलख अपार है, सायर सपत भरे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाए दा, राव सस दीपक ज्योत सबाई, आपे कर वेखै वड्याई, ज्योत स्वरूप सदा।

अपर अपारी आपे कुदरत कार कर देखै सुनोह सुन उपाय दा पौन पानी सुनै ते साजे सृष्ट उपाय काया गढ़ राजे अगन पानी जियो जोत तुम्हारी सुन्ने कला रहाए दा सुनोहो ब्रह्मा बिसन महेश उपाए सुन्ने वरते जोग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिये भरम चुकाए दा सुनोहो सपत सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सत सर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जोन ना पाए दा फिर बाहुड़ जोन ना पाए दा सुनोहो चंद सूरज गह नारे तिस की जोत त्रिभवन सारे सुन्ने अलख अपार निरालम सुन्ने ताड़ी लाए दा सुनोहो धरत आकाश उपाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रिभवन साज मेखुली माया आप उपाए खपाए दा सुनोह खाणी सुनोह बाणी सुनोह उपजी सुन समाणी ओत भुज चलत किया सिर करतै बिस्माद शब्द देखाए दा सुनोह रात दिनस द्वय किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज घर पाए दा साम वेद रोग जजुर अथर्वण।

सुन्नोह उपजे दास अवतारा, श्रेष्ठ उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजे, सब लिखिया कर्म कमाए दा, गुरमुख समझै रोग ना होई, एह गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुकत परायण, सो मुकत भया पत पाए दा, पंच तत् सुन्नहु परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला द्वे मस्तक लिखे, पाप पुन भी जाए दा, उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रते हार रस मत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे भाग मिलाए दा, इस

दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी रोग रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन गुर मिले है हर प्रभ पाया काला कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाने आपे जाने आप पछाने सब तिसका चोज सबाया।

हर अंतर हर रस पाया, निस दामन ज्यो चमक चंदायन दिखै, अहनिस ज्योत निरंतर पिखै, अहनिस ज्योत निरंतर पिखै, आनंद रूप अनूप सरूपा, गुर पूरै देखाया, सतगुर मिलहो आपे प्रपतारे, सास घर सूर दीपक गहनारे, देख अदिष्ट रहो लिव लागी, सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा भाओ जाए, अन भाओ पद पावै आप गवाए, ऊची पदवी ऊचो ऊचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, आत रस मीठा नाम प्यारा, नानक कहो जुग जुग हर जस दीजै, हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम परापत हीरा, हर जपते मन मन ते धीरा, दो घट घट पौ भंजन पाइय, दो घट घट पौ भंजन पाइय।

ना होई हे, आपे लाए लए सो लागे, गुर प्रसादी जम का भाव भागे, अंतर शब्द सदा सुखदाता, गुरमुख बूझै कोई हे, आपे मेले मेल मिलाए, पूरब लिखिया सो मेटना न जाए, अन दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई हे, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का दाता, होमै मार त्रिसना अगन निवारी, शब्द चीन सुख होई हे, काया कुटंब मोह न बूझै, गुरमुख होवै ता आखी सूझै, अन दिन नाम रवै दिन राती, मिल प्रीतम सुख होई हे, मनमुख तात दूजै है लागा, जनमत की न मुयो आभागा, जनमत की न मुयो आभागा, आवत जात बिरथा जन्म गवाया, बिन गुर मुकत न होई हे, काया कसुद होमै मल लाई, जे सौ धोवह ता मैल न जाई, शबद धोपै ता हछी होवै, फिर मैली मूल न होई हे, पंच दूत काया संघार है, मर मर जन मर मर जम है, शबद न विचार है, अंतर माया मोह गुबारा, ज्यो सुपन सुध न होई हे, एक पंचा मार शबद है लागे, सतगुर आए मिलिया वडभागे, अंतर साच रवह रंग राते, सहज समावै सोई हे, गुर की चाल गुरु ते जापै, पूरा सेवक शब्द संजापै, सदा शब्द रवै घट अंतर, रसना रस चाखै सच होई हे, रसना रस चाखै सच सोई हे, होमै मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखै उर धारे, एकस बिन हौ होर न जाना, एकस बिन हौ होर न जाना, एकस बिन हौ होर न जाना, एकस बिन हौ होर न जाना, सहजे होए सो होई हे, बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझै सच समाया, सच्चा सेव शब्द सच राते, होमै शब्दे खोई हे, आपे गुणदाता बीचारी, गुरमुख देव है पक्की सारी, नानक नाम समाव है साचै, साचे ते पत होई हे, मारू महला तीजा, जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते शब्द पछाता, एको अमर एका पत साही, एको अमर एका पत साही, जुग जुग सिर कार बनाई हे, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलिया सुखदाता, रसना शब्द रती गुण गावै, दर सच्चै पत पाई हे, दर साचै पत पाई हे, गुरमुख नाम मिलै वडियाई, मनमुख निंदक पत गवाई, नाम रते परम हंस बैरागी, निज घर ताड़ी लाई हे, शब्द मरै सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा, काया अंदर अमृत सर साचा, मन पीवै पाए सुभाई हे, पाड़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुर सेवे नाम न पाईऐ, पाड़ थाके सांत न आई हे, एक भसम लगाए, एक भसम लगाए फिर है भेख तारी, एक भसम लगाए फिर है भेख तारी, बिन शब्द होमै किन मारी, अन दिन जलत रह है दिन राती, परम भेख परमाई हे, एक ग्रह कुटंब मह, एक ग्रह कुटंब मह सदा उदासी, शब्द मुए हर नाम निवासी, अन दिन सदा रह है रंग राते, पै पाए भगत चित लाई हे, मनमुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ भौकै जिस कुता, जम काल तिस कदे ना छोटै, अंत गया पछोताई हे, सच्चै शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुकत ना पावै कोई, बिन सतगुर को नाओ ना पाए, प्रभ ऐसी बणत बनाई हे, एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझै, भगत पाए पाओ जाई हे, इसनान दान करह नहीं बूझ है, एक मनुआ मार मनै स्यो लूझ है,
साचा शब्द रते इक रंगी, साचा शब्द मिलाई हे, आपे सिरजे दे वडियाई, आपे भाणै दे मिलाई, आपे नदर करे मन वसिया, मेरा प्रभ इओ फुरमाई हे, सतगुर सेवहै से जन साचे, मनमुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखै, ज्यो भावै त्यो लाई हे, जुग जुग साचा एको दाता, पूरै भाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से बिछुड़े नाही, नदरी सहज मिलाई हे, होमै माया मैल कमाया, मर मर जमहै दूजा पाया, बिन सतगुर सेवे मुकत न होई, मन देखो लिव लाई हे, जो तिस भावै सोई करसी, आप हो होआ ना किछ होसी, नानक नाम मिलै वडियाई, दर साचै पत पाई हे, मारू महला तीजा, जो आया सो सब को जासी, दूजै पाए बादा जम फासी, सतगुर राखे से जन उबरे, साचे साच समाई हे, आपे करता कर कर वेखै, जिसनो नदर करे सोई जन लिखै, गुरमुख ज्ञान तिस सब किछ सूजै, अज्ञानी अंध कमाई हे, मनमुख सहसा बूझ ना पाई, मर मर जम्मै जन्म गवाई, गुरमुख नाम रते सुख पाया, सहजे साच समाई हे, धंदै धावत मन भया मनूरा, फिर होवै कंचन भेटै गुरपूरा, आपे बखस लए सुख पाए, पूरै शब्द मिलाई हे, दुरमत झूठी बुरी दुरम

पाई हे। औगणे आरी कंत ना पावै, मन की जूठी जूठ कमावै। फिर का साओ ना जाणै मूरख, बिन गुर बूझ ना पाई हे। दुरमत खोटी खोट कमावै, सिगार करे फिर खसम ना पावै। गुणवंती सदा पिर रावै, सतगुर मेल मिलाई हे। आपे हुक्म करे सब वेखै, एक ना बखस लए धुर लेखै। अन दिन नाम रते सच पाया, आपे मेल मिलाई हे। होमै धात मोह रस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई। आपे मेलै आपे मेलै आपे कर वेखै, बिन सतगुर बूझ ना पाई हे। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अभागे। आपे करे कराए आपे, होर करना किछु ना जाई हे। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखै उर धारे। सतगुर सेवा ते सुख पाया, हर कै नाम समाई हे। दूजै पाए फिरै देवानी, दूजै पाए फिरै देवानी। माया मोहे दुख माहे समानी, बहुते भेख करै नह पाए। बिन सतगुर सुख न पाई हे, किसनो कहियै जा आप कराए। जित भावै तित राहे चलाए, आपे मेहरवान सुखदाता।

पात पाए एकत नाम निवासी है अंतर हर धन समझ ना हुई गुर प्रसादी बुझै कोई गुरमुख होवै सो धन पाए साध ही नाम निवासी है अनल वाओ परम भुलाई माया मोह सुध ना काई मनमुख अंधे किशु ना सूझै गुरमत नाम प्रगासी है मनमुख मनमुख होमै माया सूते अपना घर ना संभाल है अंत वे गूते पार निंदा कर है बहु चिंता जल है दुखे दुख निवासी है आपे करता कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई

गौण गोविंद नित गाव सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बनियाई प्रगट भई सगले जुग अंतरा गुरु नानक की वडियाई सुनी अरदास स्वामी मेरा।

हे ग्रीवनवाज दातार पातशाह जी, आप जी ने अपार बख्शिश कीती है। दीवान दी संपूर्णता उपरंत आप जी ने पावन श्री मुखवाक बख्शिया। आप जी दे सुंदर स्वरूप दी टहल सेवा होई। सोहिला साहब जी दी बाणी दा पाठ कीता गया। बाणी पढ़दिया आप जी दी सेवा करदिया हजूरी विच विचरदिया होईयां बेअंत प्रकार दियां भुलां दी मुआफी बख्शनी।

आराम फुरमाओ, सेवका नु खुशियां बख्शो, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल

फिरत फिरत प्रभ आया परयाताओ शरण आए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए मैं गरीब सच टेक तू मेरे सत गुर पूरे देख तुम्हारा दर्शन मेरा मन धीरे सगल गुणा के दाते स्वामी बिना सुनो एक दीना देहो दर्शन नानक बलिहारी जियाड़ा बल बल कीना आस प्यासी पिर कैताई ज्यो चातरिक बूंदेरे कहो नानक जियाड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसहु कुरसहु झटिया तुद डिठे सचे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वे साहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी

सेवा पाइए जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइए गुर पूरा वेखा लिया गुर सेवा पाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिने सच नाम चित लाया 643 अंग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

अदूर कथना कथी न आवे तोट काथ काथ कथी कोटि कोट कोट देदा दे लै दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक विगसै वे परवाहु साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आख है मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मुहाओ के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया भाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हाओ जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीरथ नावा जे ते सभावा विन भाने के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाउर खाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोय ना सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लो पाताल सुनिया पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख साला हनुमंद सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया सासत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इसनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुना के गाह सुनिया सेख पीर पात साह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहै पिछै पछुताए कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध मन्नै मोहे चोटा ना खाए मन्नै जाम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पत स्यो प्रगट जाए मन्नै मग ना चलै पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै पावह मुख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारे गुर सिख
मन्नै नानक भवहै न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावहै दरगह मान पंचे सोह है दार राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कहै करै विचार करते कै करनै नाहि सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार धवलै उपर किता भार धरती होर परै होर होर तिसते भार तलै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम एहो लेखा लिख जानै कोय लेखा लिखिया किता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कहै सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरियाए हथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीते कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरियाए मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहु आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाहो तीर्थ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाईया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठिकाओ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपाउ जानै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके
वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सुरत न पाइया नदिया अतः वाह पवह समुंद न जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन हो न विसर है अंत न सिफति कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखन सुनन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जोद अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साद मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख न सकै कोए जे को खाए क आखन पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जेसनो बक्से सिफत सालाह नानक पाते साही पाते साह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल पुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वखयान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करेह ता आख ना सकहै केई के जेवड भावै तेवड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल वे गाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दार के हा सो घर के हा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी सेव कहियन केते गावन हारे गावह तोहनो पौन पानी बै संतर गावै राजा धर्म द्वारे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवते आदार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगतर साले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब
ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤ ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੁਇਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼

आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बाउ लख हो हे लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई आय कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरन नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरते ज्ञान विचार जोर ना जुगते छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राति रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरे कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेस केतिया कर्म भूमि मीर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहै पिछै पछुताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहिया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहै ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसहै के लोह करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर विखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिन काओ नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतह। जाप श्री मुख वाक पात साही दसवी छपै छंद त्वै प्रसाद। चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख। को कह न सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै। कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजै। त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत। त्वै सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत। पुजंग पर्यात छंद नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले। नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अपेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे। नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं। नमस्तं अजीते नमस्तं अपीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अटाहे नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे। नमस्तं सो एकाय नमस्तं अनेकाय नमस्तं अपूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्परमे। नमस्तं निर्देशे नमस्तं निरपेशे नमस्तं निरनामे नमस्तं निरकामे। नमस्तं निरताते नमस्तं निरकाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अपूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके। नमस्तं निरतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहे नमस्तं अबाहे। नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं परभोगे नमस्तं सुजोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे। नमस्तं अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तं अपेशे नमस्तं निरतामे नमस्तं निर्वामे। नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे। नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देवै नमस्तं अपेवै नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबनमे। नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व भंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले। नमस्तं अबरणे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे। नमोस्त अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्बाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे। नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं। नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे। नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वै प्रसाद। अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है। त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अबरण है अपूत है अपरण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंद है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंब है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है।
अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है। पूजांग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद कर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओगहर्ता परम परम परमेश्वरं पुरोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपी हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छांद अगाधे अबाधे अनंदे स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं करणासी सदा सर्वदा रिद सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर तत्र दिशा विसा हुए फैले अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हुन है जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे
एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जेह वेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जाक है जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही वह चित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भार नाडै अन दंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर मानिया चत्तर चक्कर दानिया चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना भरमंग ना पितरै ना करमंग ना काय अजन्मंग अजाय न चित्तरै न मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्य अकृसै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभाहै के धर्मं तुजाहै के आ शोक बरनै के सर्बा अपरनै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफवल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्बं कली हैं के सर्बं दली हैं के सर्बतर मान्या है के सर्बतर दान्या है के सर्वत्र गौनै के सर्वत्र पौनै के सर्वत्र देसै के सर्वत्र पेसै
के सर्वतर राजाय के सर्वतर साजाय के सर्वतर दीनाय के सर्वतर लीनाय के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर पोखाय के सर्वतर तराणाय के सर्वतर प्राणाय के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेसाय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर पानाय के सर्वतर मानाय के सर्वतर इंद्राय के सर्वतर चंद्राय के सर्वं कलिमय के परमं फहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामय सलीखतमुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामै रुजूअल निदानै हरीफुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तो पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आदरूपे अनाद स्वरूपाय अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागाय त्रिभुगत स्वरूप हैं अचिज हैं अछूत हैं के नरकं परणास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंध हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोतराय न पुत्राय न सत्तराय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राजक रहिंद हैं करीमुल कमाल हैं
के हुस्नुल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल सिकन हैं, हिरासुल फिकन हैं, कलंकं परनास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजायक रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, के नरकं परनास हैं, बिहेस्तुल निवास हैं, के सरबुल गवन हैं, हमेशुल रवान हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परं परम ईश हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुरत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के अमितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो बेपूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अपंग हैं, मद भार चंद त्वय प्रसाद, मुन मन परनाम, गुण गण मुदाम, अर बर अगंज, हर नर परपंज, अनगण परनाम, अनगण परनाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुण गण परनाम, जल थल मुदाम, आन छिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गत मित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित धर तुरास, आ जान बाहु एकैस दाहु, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, घर घर प्रणाम, चित चरण नाम, अनछिज गात, आजिज न बात, अन झंझ गात, अन रंज बात, अन तुट भंडार, अन थट अपार, आदीठ धर्म, अत ठीठ कर्म, अनबरन अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद, त्वय प्रसाद, करुणालय है, अरकालय है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्ब उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्व पास्या है, सर्वनास्या है, करुणाकर है, विश्वंग पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, पर ते पर है, करुणाकर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी त्रित है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नर नायक है, खल कायक है, विश्वंग पर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्व पायक है, भव भंजन है, अरगंजन है, रिप तापन है, जप जापन है, अकलंग कृत है, सर्वा कृत है, कर्ता कार है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बास है, जस के जस है, पुजंग पर्यात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पूजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासी सोतर्मं विभूते सदा सचदानंद सतरं परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्तर चक्करवर्ती चत्तर चक्कर भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साही दसवी त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो का

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत सीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नंग ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखा पौन आहार जति जत धार सबै सो बिचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन मातिग जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सुवेक देवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मिर्तान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मिर्तान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोर परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन कवाज संघरिय पूरन होए हमारी आ

प्यासा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास ने बरिया, हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रच्छा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को साव गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना है, घट घट के पट पट की जाना है, जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकरख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह धार सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निरिबकार निरलंब, आदि अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताकाओ कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप सुरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचम, भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जित उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रान काता, जे अस तुज तव सरणी परे, तिन के दुष्ट दुखित हुआ मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह ऐ है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई,
एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दैलेहो उबारी। सर्ब ठाउर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुब राता। किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुनै गुंग जो याहे सो रस न पावई। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर के रहै। हो जो याकी एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई। संबत सत्तर है सहस पनिजै अर्ध सहस फुन तीन कहिजै। भाद्रव सुदि अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया। पाए गहे जाब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मानेओ। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहें हम एक ना जानेओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखानेओ। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया। वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया। शब्दोता गावहो हरि केरा मन जिने वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो। तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार। ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा। क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है। जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया। वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब। क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुरबान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होवा तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बज हो। क्या करे वेचारिया
तुद बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया एस नाउ होर थाउ नाही, शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया जानिया, आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदर हो जिन का मोह टुटा तिन का शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया, बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै, पावै ता सो जान देहे जिसनो, होर क्या कर है वेचारिया। एक भरम भूले फिर है दह दिस, एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावै। कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावै, आवहो संत प्यारिहो अकथ की करहै कहानी, करहै कहानी अकथ केरी, कित द्वारै पाईऐ तन मन धन सब सौप गुर का, हुक्म मन्या पाईऐ हुक्म मन्हो गुरु केरा, गावहो सच्ची बाणी। कहै नानक सुनहो संत हो कथिहो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया, चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया, एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईया, कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया। कहै नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया, ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले, साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइयै, ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरै नाले। कहै नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा, अपना आप तू जान हे जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखान ए आखह ता वेखह, सब तू है जिन जगत उपाया। कहै नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाए एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चूका सत गुरु भला पाया, कहै नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता, हकेरी बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज त्रिसना, बहुत नाही बोलना, खन्या हो तिखी वाल हुनकीत मार्ग जाना, गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी। कहै नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जेव तू चलाए हे तिवै चलहै जिन्ना मार्ग पाव, हे कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्याव, हे जिसनो कथा सुनाए हे अपनी से गुरद्वारै सुख पाव, हे। कहै नानक सच्चे साहिब ज्यो पावै तिवै चलाव, हे एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया, जिन धुर हो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्लां गल्ली किनै ना पाया। कहै नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया, पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहै नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया,
कर्मी सहज ना उपजै, विन सहज जाय सहसा ना जाय, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए, सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, मन धोवहो शब्द लग हो हर स्यो रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाए, जियहो मैले बहरहो निर्मल, बहरहो निर्मल जियहो ता मैले, तिनी जन्म जुवै हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहु विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही, फिर है ज्यो बेतालिया, कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुवै हारिया, जियहो निर्मल बहरहो निर्मल, बहरहो ता निर्मल जियहो निर्मल, सतगुर ते करनी कमानी, कूड़ की सोए पहुचै नाही, मनसा सच समानी, जन्म रतन जिनी खटिया, भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रह है गुर नाले, जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जिया हो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै समाले आप छड, सदा रह परनै गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनहु संत हो सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते विमुख होवै बिन सत गुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थै कोई, पुछो हो बिबेकिया जाए, अनेक जूनी भरम आवै बिन सत गुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सत गुरु शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखहो बिन सत गुर मुक्त न पाए, आवहो सिख सत गुरु के प्यारिहो, गावहो सच्ची बाणी बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी, जिन कौ नदर कर्म होवै हृदय तिना समानी, पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जपिहो सारिग पाणी, कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी, सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सत गुरु बज होर कच्ची बाणी, कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आख वखाणी, हर हर नित कर है रसना, कहया कछु ना जानी, चित जिन का हिर लया, माया बोलन पै रवानी, कह नानक सत गुरु बज होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हो आसमाओ, शब्द सेती मन मिलिया सचै लाया, भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, सेव सकत आप उपाय, कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै, गुरमुख किसै बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त, शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एकस स्यो लिवलाए, कह नानक आप करता पे हुक्म बुझाए, सिमरित शास्त्र पुन पाप बीचार दे, तत्तै सार ना जानी, तत्तै सार ना जानी, गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी, तिहि गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रैन विहानी, गुर किरपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया, बोला है अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागै, जागत रैन विहानी, माता के उदर मह प्रतपाल करे, सो क्यों मनहो विसारिय, मनहो क्यों विसारिय, एवड दाता जे अग्न मह आहार पहुचावे, ओसनो केहो पोहे ना सकी, जिस नौ अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिया, कह नानक एवड दाता सो क्यों मनहो विसारिया, जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया, जा तिस भाणा ता जमया परवार, भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै,
मोह उपजै भाव दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादे जिन्हां लिव लागे तिने विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसै विटहो रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिस नूं सिर सौपिया विच हो आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहै। हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपिहो जियाहो लाहा खटिहो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा। ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए हूरत किता जिचर हर रस पलै ना पाए। हर रस पाए पलै पिया हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए। कहै नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापए। गुर चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भुग। कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जुग। ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया। जिन हार तेरा रचन रचिया सो हार मन ना वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन जिन सतगुर सिव चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई। नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई। ए सरवन हो मेरे हो साचै सुनना नो पठाए साचै सुनना नो पठाए। शरीर लाए सुनहु सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी। सच अलख वेडाणी ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र होवा हो साचै सुनना नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया।

हद तुरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन देठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्चियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल किराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फत है बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाये खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ समूह गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान ने ताणियां दे तान ने ओटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंज बाणियां दे नितनेम संपूर्ण होए हन महाराज बाणी पढ़दियां तो होईयां भुलां आप जी ने बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फलादेश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते परवान करनी सब नूं अपने दरों घरों नाम दी दात गुर सिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदरुस्तियां बख्शिश करनियां अते महाराज इसे तरह अपने दर घर दे नाल आप जी ने जोड़ी रखना आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंचामृत श्री कड़ाह प्रसाद जी दी देख सजा के हाजर है आप जी दे दर प्रवान होवे ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ,
1: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

मट्टिकाक्यातु पैसुवामी मानस की गत एही जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करहो किछ मेहर उपावहो डुबदे पत्थर तारे जियाड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी।

जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्ची का विचवास। इक न हुकम समाले, इक न हुकमे करे विनाश।

तू जिन सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले तां तेनी सच कमाया। सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूरख सच ना जानी मनमुखी जिन गवाया।

चरण लागे। सलोक पावन गुरु पाणी पिता माता तरत महात दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दस होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दर्शन दीदार उपदेश जी का त्यांतर के बोलो जी। पांच प्यारे चार साहिबजादे चाली मुक्ते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्हां आप जी दा नाम जपिया वंड के छकिया।

हर मार्ग पाइया गुर पूरै वेखालिया गुर सेवा पाइया जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइया गुर पूरै वेखालिया गुर सेवा पाइया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी जिन्हां दे पावन पवित्र चरणा अंदर आनंद कारज की आरंभता की अरदास हुई है, गुरु साहिब ने हुक्मनामा बख्शिया है। हुण रागी सिंह पल्ले का शब्द पढ़नगे। बेनती है बेटी दे परिवार नूं, ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

परवृत्ती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ो हर नाम तियावो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूरा आराधो सब किल विख पाप गवाया सहज आनंद हुआ वडभागी मन हर हर मीठा लाया जन कह नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया जन कह नानक लाभ पहली

प्रभु मन चौ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो

मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाई हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया

सब तुम बात पिता हम बारिक तुमरी कृपा मैं सुख कोई ना जानी तुमरा उचे ते ऊचा भगवन सगल समग्री तुमरा सुतर तुम ते होए सो आग्या तुमरी गत मेत तुम ही नानक दास सदा कुरबानी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नू समराओ श्री हर आए श्री हर किशन ते आईऐ जिस डिठा सब दुख जाई तेग बहादुर सिमरियां घर नौन दया वै ताई सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तन्हा प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु चिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सिह दिते बंद बंद कटाई खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुबासां संग निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहिगुरु प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन शनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मां निताणियां दे तां नियोटियां दी ओट धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास है जी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे शुभ आनंद का लड़का पाई हरकीत सिंह खंगूड़ा तिन्हां दे दादा सरदार जगतार सिंह खंगूड़ा ते दादी बलवंत कौर जी खंगूड़ा पिता सरदार कुलवीर सिंह खंगूड़ा ते माता गुरमीत कौर जी खंगूड़ा लड़की बीबा मुस्कान कौर विरक दादा स्वर्गवासी सरदार नरेंद्रपाल सिंह विरक ते दादी रघवीर कौर जी विरक पिता सरदार विक्रमजीत सिंह विरक ते माता बलजीत कौर जी विरक सच्चे पातशाह तिन्हां दा शुभ आनंद कारज आप जी दी हजूरी अंदर गुरमर्यादा अनुसार संपूर्ण होए लावां दा पाठ करदिआं कीर्तन करदिआं सेवा करदिआं बेअंत भुल्लां बख्श देना सुभाग परिजोड़ी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण अंग संघ होके सहायता करनी
ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਿਛਾਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋ ਚਾਹ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੈ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਛਿਆ ਕਰਹੀ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰੱਛਿਆ ਕਰਹੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पावन पवित्र चरणां अंदर गुरु साहिब की कृपा नाल आनंद कार्ज संपूर्ण होए ने, सच्चे पातशाह दे चरणां विच अरदास होई है। सतगुरु जी ने हुक्मनामा बख्शिश किया है। सुरठ महला पंजवां, प्रभ की सरन सगल भय लाथे, दुख बिनसे सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुरु त्याया। सच्चे पातशाह कृपा करन, सुभाग परि जोड़ी दे सिर ते मेर भरिया हथ रखन। आउण वाला समा गुरु साहिब चढ़दियां कलां दा बख्शन। दोनों ही परिवारों नूं बहुत वधाइयां होण। दोनों परिवारों की श्रद्धा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरणां ते सदा साडा विश्वास भरोसा बनिया रवे। हुण गुरु घर दा ढाडी जत्था ज्ञानी भाई जरनैल सिंह जी खुड्डा, तिन्हां दे जथे पासों एक कविता विआह दे संबंध विच सरवण करिए। उस तों बाद फिर समाप्ति होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: आगे कुड़म कुड़म आई पौन नू तुरोले खरिश्ते दी सांझ पौन नू
1: आगे कुड़म कुड़म आई पौन नू तुरोले खरिश्ते दी सांझ पौन नू
0: आगे कुड़म कुड़म आई पौन नू तुरोले खरिश्ते दी सांझ पौन नू
1: आगे कुड़म कुड़म आई पौन नू तुरोले खरिश्ते दी सांझ पौन नू
0: कच्चे धागे वांगू ए ता हुंदे रिश्ते धागे वांगू ये ता हुंदे रिश्ते प्यार दियां गंडी प्याईयां ते नीयां हो गया विआह है सिपाही जोड़ी दा मापिया नू संगतां वधाईयां देंदियां हो गया विआह है सिपाही जोड़ी दा मापिया नू संगतां

ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब

रण काता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संग

अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर सांद साहो, जिस पास बैठे आंसो ही है, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनेक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपै छपाया।

अनेक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपे छपाया, हर गुण कहते कहन ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चेत चेते सुख होई, कहो।